0: जल्द
1: का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
2: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
5: Assalamu alaikum everyone, this is Muskan Zahra and welcome to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I welcome you all to the faculty hour of Faculty of Humanities and Social Sciences. Today I have a special guest with me, Ms. Aisha Naseem, who is a teacher of international relations at our department. Assalamu alaikum Ms. Kaisi hain aap?
6: Wa alaikum assalam Muskan, I'm good, thank you for inviting me to your show today.
5: Okay, would you tell us about your experience in UCP? How long have you been there?
6: So I joined UCP back in 2018. My experience has been great. I think I've seen it evolve a lot. जब मैंने join किया था UCP तो बिल्कुल हमारा department जो है उस time पे start हो रहा था. So it was the first time ever that they were offering a program of international relations and political science. So first graduate, you know, हमारा batch आया था उस time पर, वो अब graduate कर गए हैं, you know, they're working now. So of course it's been a rewarding journey. It's been a long but rewarding journey.
5: Okay, I think your experience was very good. Would you tell me which courses are you teaching currently?
6: So I taught a number of courses here. International relations, introductory ek course hota hai hamara, uske baad political science ke different courses hote hain. I've taught courses in security studies, defense and strategic studies, globalization, theories of IR. So right now in this semester I am teaching introduction to international relations, introduction to political science and peace studies.
5: Okay, which subject is more favorite of yours personally?
6: I think that's very difficult to answer. But let's just say I really enjoy Intro to IR because, you know, it's first semester students and they hardly have any idea about what IR is, what it entails. So bilkul ek blank slate ko jab aap introduce karte ho ideas, you know, which are so relatable to what is happening around us, it kind of, you know, it's always interesting to see how they respond to it and how they're always saying, oh, we understand, this is what is happening around us. So I think the most enjoyable course in that sense would be the introductory IR course.
5: That's good to know. So taking from your answer, most people aren't familiar with what IR is actually. So how would you describe IR to someone who don't know about it?
6: So as I said, I completely agree with your statement that not many people know what we study in IR, which is actually kind of paradoxical as well, because IR is all around us. Agar aap dekho, duniya ke andar itne sare events ho rahe hain on a daily basis. Right now, if we see the world around us, there are actual active wars going on, and there are so many events, in the sense of economy, domestic politics, events that shape each of us as a Pakistani, when we look at our political system and what it is providing for us. So in that sense, IR is something that is very easy to relate to, and yet it is difficult to define in that sense, because it includes so many things. So very bahut basic level pe shayad aapko ek definition agar dena chahun, just to explain to a layman or to somebody who doesn't know what it is, it would just be a study of how the world works across borders. So itne big questions हैं दुनिया के अंदर कि countries cooperate क्यों करते हैं, countries जो हैं वो wars और conflicts के अंदर indulge क्यों करते हैं, दुनिया में organizations क्या कर रही हैं, economies कैसे interact कर रही हैं, cultures कैसे interact कर रहे हैं, ideas कैसे interact कर रहे हैं. So हम IR के अंदर इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, एंड वी जस्ट डोंट लिमिट आर सेल्व टू स्टेट्स. वी ऑल्सो रियलाइज दैट IR हैज़ बिकम मच ब्रॉडर ओवर टाइम. सो IR के अंदर आप MNCs के बारे में भी पढ़ते हो, आप NGOs के बारे में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UN है, जैसे इतनी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, to a large extent social movements, even in sense aap dekhte ho duniya ke andar is time pe climate change campaigns chal rahi hain, all of these are a part of IR, because they tell us about what the what is happening in the world and how do we understand it. So it's a very broad field, and everything that is happening around you in the world, not just within your own country, throughout the broader world, is basically falls in the realm of IR.
5: Thank you, teacher, for giving us a brief introduction of IR. I'm sure students who don't know about it will be interested to learn. And now, my question is, with so many global events folding every day, how does studying IR helps us make sense of what's happening around us?
6: So we have tools in IR, just like, in every subject you have various tools which help you understand how to make sense of the various things that are happening. इसी तरह IR में हमारे पास कुछ tools होते हैं, जैसे हम levels of analysis को use करते हैं, जिसके अंदर domestic आ जाता है, individual आ जाता है, systemic आ जाता है. So what we discuss in that is कि एक individual level पे, for example, अगर एक leader है तो वो किस basis पर decision making कर रहा है, and you can understand कि एक leader जो कि decision making के role पर है, he's the one or she's the one who's making those decisions. So it does it come down to that person, their own experiences, their own personality, their own whatever they have been through and whatever the agenda they have put forward. Personality is very important. So even if you look at the world today, if you just compare contrasting personalities, to aap US ke presidents ko dekh lo, Obama had a different personality. You want to understand foreign policy decisions that US undertook during Obama's presidency. If you're using an individual level of analysis, you would see how his personality shaped that. Similarly, Trump has a different personality, Joe Biden has a different personality. So you look at their own personalities and how that influences decision making. So is tarah different levels aur hain. Hamare paas ek domestic level aa jata hai jo hame batata hai ki ek state ki internal characteristics kya hain. So वो स्टेट पावरफुल है, वीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा ओपन है, कितनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है दुनिया के साथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके डोमेस्टिक फीचर्स हैं. सो दे ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ स्टेट इज एक्टिंग इन द वर्ल्ड. उसके अलावा जो मैं आपको कही थी, थर्ड एक कॉमन लेवल है जिसको हम यूज करते हैं, वो सिस्टेमिक है. दैट टेल्स अस के अलायंसेस क्या हैं दुनिया में, पोलैरिटी क्या है दुनिया में, कितनी सुपर पावर्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, स्टेट्स के अलायंसेस कैसे हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं, बिकॉज इफ यू सी कंट्रीज विल टेंड टू फॉलो देयर एलाइज एंड स्पेशली इफ देयर इज अ यू नो वीक स्ट्रांग रिलेशनशिप देयर. सो वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी आयर की अंडरस्टैंडिंग को, इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को.
5: थैंक यू सो मच मिस फॉर दिस इनसाइटफुल आंसर. अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: FM 92.6 UCP की दुनिया. टुडे आई एम हियर फॉर फैकल्टी आवर्स एंड हमारे साथ हमारी गेस्ट है मिस आयशा नसीम. एंड वी वर डिस्कसिंग कि IR के अंदर अगर हम देखें तो ग्लोबल इवेंट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको IR के व्यू से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके मिस, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बट IR में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है?
1: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज अ वेरी कोर इशू और टॉपिक इन IR जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज के साथ ग्रैपल करते हैं, और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम, हर इशू को टैकल करने के अंदर यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नजर आती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड व्हेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, एक कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज वेरी ऑब्वियस, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, IR की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी इज बेसिकली रिफर्स टू दिस फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी यू नो व्हाट हैपेंस एंड यू नो हाउ डू स्टेट्स इंटरैक्ट. सो आप इसके अंदर देखोगे कि क्लियर कट है कि देयर इज नो अथॉरिटी, यू नो यू सी स्टेट्स ब्रेकिंग लॉज एंड यू नो जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसको स्टेट्स ब्रेक भी करती हैं, लेकिन दे गेट अवे विद इट एंड यू नो सम गेट पनिश्ड एंड सम डोंट गेट पनिश्ड. सो ऐसा कोई यूनिवर्सल हमें सिस्टम नहीं नजर आ रहा जो कि एक लोकल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल करती है. एंड येट डिस्पाइट दैट हम ये भी देखते हैं कि कोऑपरेशन हो रही है, कुछ चीजों के अंदर लॉ ऑफ मेकिंग जो है वो हो भी रही है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है. तो ये जो कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है ये एक सेंट्रल आइडिया है जो कि IR ने, आप कह लो इकोनॉमिक्स से भी हमने बोरो किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द बिगिनिंग कि IR एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. तो जहां पे आप IR के बारे में पूछ रहे थे कि IR क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो IR इंटरडिसिप्लिनरी है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट आइडियाज को हम इकोनॉमिक्स से भी बोरो करते हैं, सोशियोलॉजी से बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से बोरो करते हैं. वो जो मैं अभी आपको इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस बता रही थी, इट इज सो मच लिंक्ड टू साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ लीडर्स. तो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम दैट यू जस्ट आस्क्ड अबाउट, तो वो एक कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है जिसकी एक बेसिस इकोनॉमिक्स के अंदर भी है कि आप कैसे इंश्योर करो कि वो चीजें जो सबके फायदे में है उनको स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो उनको इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना भी कर रही, राइट? जैसे फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल देख लेते हैं. अब आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज, यू नो, बिकॉज इट इज सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड इट इज बींग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा. सो इट्स समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. अब यू नो द एयर दैट वी ब्रीथ इज फॉर एवरीबडी, राइट? हम वहां पर तो वो बॉर्डर्स नहीं बना सकते एयर के अंदर जो हमने लैंड के अंदर बनाए हुए. सो इट्स लाइक एवरी कंट्री इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू नो, विद द लेवल ऑफ पोल्यूशन एटसेट्रा. तो वो हर कंट्री उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कुछ कंट्री ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट इट इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट एवरीबडी, राइट? सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल कह दो कि नहीं, मैं तो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा एंड सो आई डोंट नीड टू यू नो डू समथिंग अबाउट इट, इट्स नॉट रियली देयर बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू. आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल देख लो, अभी ये जो हमारे फ्लड्स आए थे रिसेंट, उसके अंदर हमारा यही एक यू नो हमारा ऑफिशियल नैरेटिव था दैट वी हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मच टू ग्लोबल वार्मिंग, बट यू नो दीज फ्लड्स हैव बीन कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड वी हैव पेड द कॉस्ट ऑफ इट, इन द सेंस के कितनी लाइव्स लूज हुई हैं, कितनी हमारी इकॉनमी सफर की है. सो यही बात आ गई कि चाहे कोई स्टेट उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हो चाहे ना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हो, आपने वो प्रोवाइड करना ही है गुड, और आपने इंश्योर करना है कि सब कंट्रीज जो हैं वो उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल थिंग. एंड इफ फॉर एग्जाम्पल वन स्टेट सेज कि नहीं जी हम तो नहीं इसको फॉलो करेंगे, तो वही बात है, एयर कॉमन है, इट इज स्टिल गोइंग टू इफेक्ट other people. So how are you going to deal with it? इसके भी basic principles हैं. हम बहुत basic level पे dominance पढ़ते हैं, principle of dominance उसको कहा जाता है, फिर principle of reciprocity है, principle of you know identity है. Briefly I'll just mention कि इन सब के अंदर क्या होता है and then we can move on. Dominance का principle कहता है कि जो powerful states हैं वो less powerful states को you know dictate करती हैं. So जैसे हमें for example different countries कहें कि you should do something about climate change and because a powerful country is saying it, we will follow it. ठीक है, वो डोमिनेंस हो गई, रेसिप्रोसिटी होगी कि वो हमें दूसरे कंट्रीज को इंसेंटिव दे दें कि

0: जी अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, सो आप हमारी बात माने हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। सो वो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि तुम भी करो ये, तुम ये चीज करो, मैं ये चीज कर रही हूँ, तो एंड वी विल कलेक्टिवली यू नो बेनिफिट फ्रॉम इट। और देर इज आइडेंटिटी, यू रियलाइज दैट यू नो देर इज समथिंग विच यूनाइट्स यू, विच इफेक्ट्स एवरीबडी एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। सो ये प्रिंसिपल्स हमें एट वर्क नजर आते हैं इन एवरीथिंग, इन एवरी इवेंट, इन एवरी इशू दैट इज गोइंग ऑन, एंड समहाउ वन वे और दी अदर इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हमें दुनिया में नजर आ रहा है कि स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग एंड इंटरैक्टिंग पॉजिटिवली ऑन वेरियस इश्यूज दैट अफेक्ट ऑल ऑफ देम।
1: क्योंकि मिस देखें आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, ब्राजील सब एक साथ मिलके अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक बेटर करने के लिए काम करें, हालांकि चाइना के इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के रशिया से भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
0: सो दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनाइटिंग यू, राइट, कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसको आप फाइंड कर सकते हो, और आप फिर यू नो वन स्टेप फॉरवर्ड अगर हम एक लिबरलिज्म की थियरी है आईआर के अंदर उसके तरफ आ जाए, तो वो यही कहती है कि कंट्रीज का अपना भी फायदा है कि वो आपस में ट्रेड करें, इस तरह के अलायंसेस बनाएं जैसे कि आपने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, बिकॉज यू नो इट इज इन एवरीबडीज बेनिफिट। तो अगर आपके कोई एरियाज ऑफ कंटेंशन भी हैं, अगर कोई एरियाज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप क्लैश कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करोगे, ट्रेड करोगे, उसका फायदा आप दोनों को होगा। सो इट्स नॉट अबाउट यू नो हु गेन्स मोस्ट, इट्स जस्ट अबाउट द fact that you should look there at the fact that you are gaining from it. So इसलिए हम अपनी interest की बात करते हैं कि ये भी हमारी interest में ही है कि हम आपस में इस तरह के blocks बनाएं और trade करें. This is beneficial for individual states that are a part of it.
1: थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत से पॉइंट्स क्लियर कर दिए मेरे भी, और आई एम श्योर जो ऑडियंस है उनको भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी विल टेक अनदर ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCB।

0: Welcome back everyone. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I have Miss Aisha Naseem with me and we were discussing ke agar state mein koi central authority nahi hai to phir decision making kaise hoti hai, and we had a very insightful discussion. Hume bahut si cheeze clear hui. Now Miss, aapne liberalism ki baat ki thi, so usi se mujhe theories yaad aayi because I have also studied approaches and theories of IR. So aapko kya lagta hai ki kaun si theory most helpful hai understanding today's events?
1: So this is a very relative question, ठीक है? So इसका एक कोई जैसे fixed answer जो है वो नहीं है. So let me think about which theory, for example, I would answer as being most relatable. Why don't you tell me, Muskan, since you just mentioned कि आपने भी theories पढ़ी नहीं है, what is your approach towards different theories that you've studied? And which one do you think is most adequate?
0: Okay, first of all, realism ko bahut zyada relate kiya jata hai anarchy se aur uske core ideas bhi yahi hain. Phir liberalism, in dono ko dominant samjha jata hai. But when I studied constructivism, to tab maine dekha ki wo world ko bilkul objectively nahi dekhta. Ekdam different tarike se perceive karta hai. For example, ki agar aapke samne ek chair hai, to constructivist ke according har kisi ka apna opinion hoga ki aapne ek chair dekhi, but jab aap imagine karoge to aap usko different, har koi differently imagine karega, ki koi use moving chair ke taur pe imagine karega, koi classroom chair ke taur pe imagine karega. To ye sirf depend karta hai ki aapne us cheez ko kaise perceive kiya. Aur isme main example dungi ki jaise countries like Japan और नॉर्वे, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, हालांकि बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि दुनिया में अनार्की है और हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए. बट उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर लिया, उनके इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स को लेकर कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स परसीव नहीं करेंगे. आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसी चीज का बैकग्राउंड क्या है और हमें बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए.
1: अच्छा, बिल्कुल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी. सो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक, जैसे आपने शुरू किया कि हम ज्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, एंड इन फैक्ट वी कॉल देम द मेन स्ट्रीम थ्योरीज. सो वो वही थ्योरीज हैं जो कि बहुत अरसे से IR का पार्ट हैं और उनको बहुत अरसे से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और उन्हीं को फिर हम अडॉप्ट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड. तो मेरी जो इसके अंदर एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. आई फील यू नो दैट क्रिटिकल थियरी इज सॉर्ट ऑफ मोर एडिक्वेट. अब उसके देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुझे लगता है रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो तो बहुत, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत एक एक्सेप्ट कर लेती हैं सिस्टम को एज इट इज और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं. दे डोंट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन कि वो सिस्टम आया कहाँ से. ठीक, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, कुछ कंट्रीज जो हैं वो पावर के पीछे हमें भागते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं बिल्कुल ही नजर आते हैं, देयर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर इंटरनल सिस्टम्स, ऑन डेवलपमेंट, एंड दे प्रायोरिटाइज दैट ओवर फॉर एग्जांपल मिलिट्री एंड डिफेंस. सो देन एट द सेम टाइम यू सी डिफरेंट अदर कंट्रीज विच आर ओनली रनिंग आफ्टर यू नो मैक्सिमाइजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वॉट एक्सप्लेन्स दैट, इसका मतलब है कि हर स्टेट सेम नहीं है और हर स्टेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट जो है या फिर डिफरेंट तरीकों से उन इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सबको यू नो फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को, यू नो पाकिस्तान इज वन ऑफ दैम, वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल थियरी एंड वी नीड आर स्कॉलर्स, आर रिसर्च टू अडॉप्ट दैट थियरी इज वेल. क्योंकि क्रिटिकल थियरी बेसिकली क्या करती है कि इट आस्क्स दीज क्वेश्चंस के किसकी इंटरेस्ट सर्व हो रही हैं, किसके पास पावर है, किन की वॉइसेज हैं जिनको साइलेंस किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इस दुनिया को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम मोर इक्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल बेस्ड है, जहाँ पे जस्टिस है या नहीं. तो आई बिलीव दैट इट गिव्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी IR आई कहाँ से है और ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. सो यू ऑलरेडी मैंशनड कंस्ट्रक्टिविज्म. आई विल जस्ट गो वन स्टेप अहेड एंड आई विल मैंशन पोस्ट कॉलोनियलिज्म. एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क विच आई हैव अडॉप्टेड इन माई रिसर्च. सो वॉट इट बेसिकली सेज इज कि अगर आपने दुनिया को अभी अंडरस्टैंड करना है तो आप हिस्ट्री को देखें, आप लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म देखें, विच यू नो ऑल ऑफ अस एक्चुअली इन पाकिस्तान आर अवेयर ऑफ, बिकॉज यू नो वी हैव बीन अ फॉर्मल कॉलोनी ourselves. ब्रिटिश जो थे वो रूल कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और एक सेट किस्म का पैटर्न जो था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद वही सिस्टम जो है वो हमने फॉलो किया इवन व्हेन दे लेफ्ट. सो व्हाट पोस्ट कॉलोनियलिज्म सेज इज दैट इट इज़ वेरी रेलेवेंट कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उन लेगेसीज के थ्रू एक्सप्लोर करो जो कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म की हैं. सो दे आर नॉट जस्ट समथिंग ऑफ द पास्ट, दे शेप टूडेज ग्लोबल इनइक्वालिटीज, पैटर्न्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल द कैटेगरीज दैट वी इवन यूज टू स्टडी आया. जैसे आप देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितना फोकस है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स जस्ट वन एग्जांपल. आप और देखो हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इकोनॉमिक यू नो कैपिटलिज्म के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं एंड वी यूजली डोंट नो वेयर दीज आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम. और कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समहाउ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट दोज हिस्टोरिकल things which have been a part of our history and which have been a part of you know our development and then we can't really understand this. theek hai, so ye jo international system hai isko post colonial scholars kehte hain ki this has been built through processes of conquest, resource extraction, cultural domination, etc. just briefly agar iski hum koi example dekh le to aap dekh sakte ho hum acha israel palestine war ko hum dekhe agar hum usko sirf as a security issue ek to एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू नो इट इज इट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू और इज देयर यू नो अ डीपर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और अंडरलाइंग इशूज देयर. जैसे आई विल लिंक इट यू नो विद द कॉलोनियल हिस्ट्री इन द सेंस के डिवीजन ऑफ लैंड कैसे हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन कैसे हुई, वो सारी बेलफोर डिक्लेरेशन के साथ लिंक्ड है जो कि कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं ब्रिटिश की. सो यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से प्रॉब्लम्स डेवलप हुई. इसी तरह अगर आप अफ्रीका को देखो, अफ्रीका यू नो इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट इन द सेंस ऑफ दैट इट हैज अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, येट आप देखते हो कि इट इज द पुअरेस्ट यू नो मोस्ट अनस्टेबल मोस्ट यू नो वीकली गवर्नड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म हमें ये बताएगी कि यू नो कॉलोनियल पावर्स ने कैसे रिसोर्सेज वहां से एक्सट्रैक्ट किए और फिर किस तरह से अपने आप को डेवलप किया. एक इतनी फेमस बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स दैट यू नो ये जो रिसोर्स कर्स है अफ्रीका की, इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज यू नो ब्रॉट अपॉन देम बाय देमसेल्व्स, इट इज समथिंग विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन देम. इट इज अ पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और अंडर डेवलपमेंट. और ये हमें क्या चीजें हैं, ये सारी एग्जाम्पल्स बताती हैं कि देर इज अ वे फॉरवर्ड. मतलब थोड़ी सी एक क्रिटिकल थियरी की ये एडवांटेज है कि वो आपको ये भी बताती है कि हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहेगी कि आप डीकॉलोनाइज करें, जो आप लोगों के लिए नई चीजें वर्क कर रही उनको छोड़ें और जो चीजें वर्क कर रही हैं उनको अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कॉलोनियल टाइम्स से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया है और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट दे वर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल. यू नो दे वर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीजों को रियलाइज करो और स्टडी करो तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज्यादा सूटेड है. सो देयर इज होप फॉर अ चेंज.
0: थैंक यू सो मच मिस, और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे कॉलोनियल लेगेसी है, बिकॉज एवरी कंट्री वाज अ कॉलोनियल एट सम टाइम.
1: इट्स नॉट दैट, यू नो, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल और जस्ट लर्न द एग्जांपल और टेक अवे कि यही है कि सारी गलती उनकी है. आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. वी शुड रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स एज वेल, बट आई मीन देर इज अ लेगेसी एंड इट शुड टेल यू कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ्लेक्ट कर दें ब्लेम सारा, दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग.
0: थैंक यू सो मच मिस, एंड आपके इतने डिटेल्ड आंसर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिटिकल थ्योरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरी डिटेल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ आईआर, नॉट जस्ट बेसिक थ्योरीज. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस आयशा नसीम टू बींग आवर गेस्ट फॉर टूडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड लर्निंग टू होस्ट हर. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. FM 92.6 UCP की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
2: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.
4: Number 1 radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: Don't worry, that's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh hi nahi. Main janda baby tu jandi, main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया UCP की दुनिया UCP की दुनिया।

FM 92.6. Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की.
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: UCP की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ है. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ है। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुर कहानी। आज मैं आपके पास एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो शायद उतना ही गहरा भी है। हाउ इज अ सॉन्ग बॉर्न? क्या एक सॉन्ग सिर्फ कॉर्ड्स और लिरिक्स का नाम है, या फिर एक फीलिंग, एक मेमोरी, एक अनसुनी कॉन्वर्सेशन जो धीरे धीरे सुर की शक्ल ले लेती है? कभी कभी एक गाना किसी डायरी के आधे जुमले से शुरू होता है, कभी किसी बस राइड से, कभी हार्ट ब्रेक से, और कभी सिर्फ एक रैंडम वॉइस नोट से जो रात के 3 बजे रिकॉर्ड किया हो। हम जब कोई फिनिश सॉन्ग सुनते हैं तो हमें सिर्फ उसका फाइनल वर्जन नजर आता है, बट वी नेवर थॉट अबाउट द काउंटलेस आवर्स दैट गो बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट सॉन्ग। आज की कॉन्वर्सेशन मेरे लिए पर्सनली भी बहुत खास है, बिकॉज एज समवन जो खुद म्यूजिक को सीख रहा है, लिख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टूडियो के अंदर असल में होता क्या है। हाउ डज इमोशन बिकम साउंड? हमारे इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत खास मेहमान। आज हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड वेरी क्रिएटिव माइंड से एड्रियन डेविड इमैनुअल। से एड्रियन सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि फीलिंग्स को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं। उनका काम मॉडर्न प्रोडक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के दरमियान एक बहुत खूबसूरत बैलेंस क्रिएट करता है। से एड्रियन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मोस्ट ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, और अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो इट वुड मोस्ट डेफिनेटली बी द ओएसटी ऑफ वो पागल सी। से एड्रियन स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी विद द इनॉग्रल सीजन ऑफ नेस्कैफे बेसमेंट एज ए मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और उसके बाद आपने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी सर शिराज उप्पल के साथ शुरू की। शुरू ही से सर मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक फरहान सईद, शफकत अमानत अली, सप्तान खालिद एंड मेनी मोर। Sir Adrian has composed and produced music for TV, dramas and films, including the most recent Love Thee song. So without any further ado, let me hand over the mic to our very special guest, Sir Adrian David.
1: Kya hal?
0: Sir, bilkul theek, aap kaise hain sir?
1: Behtareen. So good to have you. I mean, so good to see you after, I mean, you're having me.
0: Yes, so good to see you. It's a lovely opportunity aaj to have you, sir, here, because I've wanted to have you on the show. I've wanted to have this conversation with you. और प्रोडक्शन आपको सिंस ओवर द फोन कॉल तक ये पता ही है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट।
1: यू बीन बगिंग मी सिंस अ व्हाइल।
0: सो जस्ट टू नो मोर, एंड पर्सनली ये मेरे लिए एपिसोड बहुत फायदेमंद हो गया, आई एम श्योर। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। एंड सर,
1: अच्छा मैं पहले ना एक एयर क्लियर कर दूं कि मैंने उठते ही कहा ना सो गुड टू हैव यू।
0: यस,
1: उसकी एक रीजन ये है कि हम ये जहां कर रहे हैं ना, ये जगह मेरे लिए घर है, क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ university, then I've taught in मैं business faculty का student था,
0: right?
1: But then I taught in this faculty,
0: okay.
1: Right? For good 2 years, it's like homecoming.
0: So for me, you're an alumni too.
1: Absolutely,
0: an alumni, a teacher, absolutely.
1: And then we had when we were studying here. I mean, we used to bug your dad the way you bug me, right? So वो रेपो जो है वो तब से चली आ रही है, वो एक रिलेशन तब से चला आ रहा है,
0: right.
1: और I mean it's so good to be here and again I'm talking to you on this platform.
0: I'm so happy to hear that, sir. Sir, if I just dive right into it, तो सबसे पहले like first and foremost, where does a song start? Like उसकी beginning किस चीज से होती है? Does it start with the lyrics? Does it start with the melody? कोई chords? मतलब all in all, what is the point where you think कि हाँ अब एक गाना start हुआ है?
1: यार देखो, गाना start होता है emotions से,
0: right?
1: ठीक है, it's neither the lyrics nor the melody, nothing else. It starts with an emotion, right? दो तरीके होते हैं, हम दोनों चीजों को साथ साइड बाय साइड लेके चलेंगे। एक है कि यू आर अ कमर्शियल प्रोड्यूसर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर अदर आर्टिस्ट्स और कंपनीज और से फिल्म्स और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर योरसेल्फ और यू आर मेकिंग म्यूजिक योरसेल्फ, यू आर मेकिंग कॉम्पोजिशंस, यू आर डूइंग व्हिच इवेंचुअली ईदर गेट सोल्ड और यू रिलीज देम एज सिंगल्स, राइट?
0: राइट।
1: तो जब तो यू आर डूइंग इट फॉर अदर पीपल, तो दे कम अप विद अ ब्रीफ, राइट? एंड over the years you have to train yourself in a way ke when a certain person comes with a certain brief, so obviously art in any form is portrayal of emotion, and that is exactly where I said ke gana emotion se shuru hota hai, right? To aapko basically you have to train yourself in a way ke aapne apne aap ko us emotion mein leke aana hai, and then automatically things start happening from there on, right? Jahan tak aap apna kar rahe ho, to apni creation mein bhi ya to aap apne aap ko kai dafa टारगेट्स देते हो, राइट? कि यार अच्छा मैंने ना दो गाने बहुत एनर्जी वाले बनाए हैं, दो गाने मैंने रोमांटिक बनाए हैं, नाउ आई नीड अ सैड सॉन्ग से. You give yourself targets, right? दूसरी चीज होती है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं आमद, राइट? आमद तो बेटा किसी भी टाइम किसी भी चीज की हो सकती है. इट कैन स्टार्ट विद अ लाइन एज इन लिरिक, इट कैन स्टार्ट विद अ मेलोडी. अभी यू सेड ना कि goes from a recording on your probably a voice note on your phone, right? कई दफा क्या होता है कि आपको जैसे OST that you talked about is your favorite OST.
0: Yes.
1: I did not come up with the melody for that, right? I had this line in my mind के अखियानू तेरी दीद दी पना चाहिए. And then I came up with the melody about it. Somehow I liked the thought. तो जहाँ बात है कि गाना lyric से शुरू होता है या melody से, it can start with either. It can start with the, कई दफा क्या होता है जैसे मैंने when I did Kashmir beats, तो मैंने उसमें एक गजल की. अब वो गजल पहले से लिखी हुई थी, so I composed that गजल.
0: Right.
1: Mostly क्या होता है कि I come up with the melody. And then I get a lyricist to write on it.
0: Right.
1: कई दफा ये होता है कि when you're making the melody, तो आपको एक लाइन भी आ जाती है साथ ही. And then you ask the lyricist to keep that line in the song because that's the original emotion and the idea.
0: That's the original thought.
1: That's the original thought, right? और आप basically चूंकि it's a portrayal of emotion, तो आप basically जो भी बंदा जिसको भी आप direct कर रहे होते हैं, someone who's writing the song, और if you have written it and you're asking someone to co-compose it with you say, तो आप उसको कहते हो कि यार इस मूड में रहना है, ठीक है? तो it can again coming back to your question, it can either start, it can work either ways. इंडस्ट्री वाइज क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज पुराने जमानों में चूंकि डिफाइंड रोल्स थे,
0: ठीक है
1: आगे आई प्रोबेबली विल गेट इन टू द कन्वर्सेशन तो आई टेल यू इन डिटेल, बट पहले डिफाइंड रोल्स होते थे. लिरिसिस्ट होता था, वो गाना लिखता था जाके. फिल्म डायरेक्टर एक लिरिक्स लिरिसिस्ट के पास जाता था. हमारे पेरेंट्स गए, हमारे इरा का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर डिफाइंड है फिल्म म्यूजिक से,
0: right.
1: तो कई दफा डायरेक्टर्स जाते थे, वो लिरिसिस्ट से लिरिक्स लिखवा लेते थे कि हमें ये बात चाहिए इस जगह पे. एंड देन दे यूज्ड टू गो टू म्यूजिक कंपोजर्स कि भाई इसके ऊपर धुन बना दो,
0: ठीक है? तो वो सारी चीज जो थी वो डिफाइंड थी,
1: और डिफाइंड थी.
0: एक बंदे से दूसरा से तीसरा.
1: अब चूंकि एक वर्ड आ गया है जिसे आप बहुत सुनते होंगे, सिंगर सॉन्ग राइटर, ठीक है? अब जो सिंगर है वो ही सॉन्ग राइटर भी है, वो ही प्रोड्यूसर भी है, वो ही कंपोजर भी है. तो इस चीज में ईदर वन कैन हैपन. यू कैन ईदर मेक द मेलोडी फर्स्ट. आजकल ज्यादातर मेलोडी पहले बनती है, देन लिरिसिस्ट कम्स इन. ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आजकल. पुराने दौर में पहले लिरिक्स लिखे जाते थे और फिर मेलोडी बनती थी,
0: राइट?
1: मेलोडी लिरिक गाइडेड होती थी मेलोडी. अब मेलोडी गाइडेड होते हैं लिरिक्स,
0: राइट? सो द कंट्रास्ट हैज चेंज्ड.
1: इट हैज इन्वर्टेड बेसिकली.
0: आपने सर अभी एक सॉन्ग राइटर वाली जो बात की है, वी विल गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन. बिफोर दैट लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड लेट्स गेट इनटू दैट आफ्टर द ब्रेक.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ होरब शम्स, आपका होस्ट। यूर लिसनिंग टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुर कहानी। हमारे साथ गेस्ट हैं सर एड्रियन डेविड। और सर, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सॉन्ग राइटिंग और सिंगर सॉन्ग राइटर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। सर, एक सॉन्ग राइटर, एक प्रोड्यूसर, एक लिरिसिस्ट, इन सारों में जो लिंक है और जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आके फेड हो जाता है, कहाँ पे वो मर्ज हो जाता है? What are the basic differences and what are the basic roles of all these different people?
2: देखो, जो song writer है ना, पहले ही होता था, जैसे मैंने पहले बताया कि defined roles थे, right? A lyricist used to be एक शायर होता था,
1: right?
2: ठीक है, और because पुराना दौर एक बड़ा literary दौर था, literature was very strong, very good literature, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं ना, फैज अहमद फैज साहब, अहमद फराज साहब, ठीक है, तो even west में भी हम Emily Bronte पढ़ते हैं, शार्लेट ब्रोंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लिटरेचर बड़ा रिच था, राइट? तो अदब में पीपल यूज टू नॉट मिंगल अराउंड विद ईच अदर्स, उनकी जो वो थी ना, डोमेन्स थी, वो बड़ी क्लियर थी। एक शायर शायरी होता था,
1: ठीक है,
2: एक कंपोजर जो धुन बनाता है वो कंपोजर ही होता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर ही होता था, राइट?
1: राइट।
2: मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ एवोल्यूशन का, क्योंकि एवोल्यूशन ना हो तो वी आर नथिंग विदाउट एवोल्यूशन, वी आर सेल्फ्स आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, राइट? तो पॉइंट इज के लोगों ने कोशिश की कि यार मैं खुद भी तो गाना लिखूं, एक इमोशन है जो मेरे में है, राइट? तो मैं उसको क्यों ना पोर्ट्रे खुद करने की कोशिश करूं। तो उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की अबाउट के यार शायरी होती कैसे है,
1: राइट?
2: उसके क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने रखना होता है जहन में, और वो सोच के उन लोगों ने गाने लिखने
1: काफी रदीफ
2: बहर क्या होनी चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ देख के उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी, ठीक है? उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी की, कुछ सीखते रहे और वक्त के साथ अच्छे हो गए, राइट? तो जब एक सिंगर अपना गाना खुद लिखता है ना, ठीक है, तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, राइट? वो अपना गाना कंपोज भी जब खुद करता है और लिखता भी खुद है और गाता भी खुद है,
1: ठीक है,
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर,
1: वन मैन शो जब हो जाता है
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, ठीक है,
1: राइट?
2: अच्छा, कुछ लोग सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर्स भी हैं, राइट? वो गाने सिर्फ वो बनाते ही नहीं है, गाना देखो ना, गाने में क्या क्या चीजें हैं, गाने

0: खैर एनीवेज, तो इसमें ये है कि पहले जमाने में लिरिक्स लिखे जाते थे, उसके ऊपर धुन बनती थी, फिर म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक अरेंजर वो होता था जो ये बताता, अब आपने एज अ कंपोजर कहा कि मुझे इस गाने में से वायलिन का इंट्रो चाहिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने इस चीज को नोट कर लिया। अब उस वायलिन पे बजना क्या,
1: तेनु एवी बैंड पे लिखे यार फरीदा, बूहे यार दे मरिए पावे ओ वेखे।

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: इन सदाए लाहौर है, इन सदाए UCPS। लुत्फान गुश बदहीद FM 92.6 जहान UCP।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया FM 92.6।
5: Broadcasting from University Studios,
6: where knowledge is empowerment.
5: This is
7: Magic 2.6.

महारत है। ये सिर्फ रेडियो नहीं, एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: मौसी की चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum everyone, this is Muskan Zahra and welcome to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I welcome you all to the faculty hour of Faculty of Humanities and Social Sciences. Today I have a special guest with me, Ms. Aisha Naseem, who is a teacher of international relations at our department. Assalamu alaikum Ms. Kaisi hain aap?
3: Wa alaikum salam Muskan, I'm good. Thank you for inviting me to your show today.
2: Okay, would you tell us about your experience in UCP? How long have you been there?
3: So I joined UCP back in 2018. My experience has been great. I think I've seen it evolve a lot. जब मैंने join किया था UCP, तो बिल्कुल हमारा department जो है उस time पे start हो रहा था. So it was the first time ever that they were offering a program of international relations and political science. So first graduate, you know, हमारा batch आया था उस time पर. वो अब graduate कर गए हैं. You know, they're working now. So of course it's been a rewarding journey. It's been a long but rewarding journey.
2: Okay, I think your experience was very good. Would you tell me which courses are you teaching currently?
3: So I taught a number of courses here. International relations, introductory ek course hota hai hamara, uske baad political science ke different courses hote hain. I've taught courses in security studies, defense and strategic studies, globalization, theories of IR. So right now in this semester I am teaching introduction to international relations, introduction to political science and peace studies.
2: Okay, which subject is more favorite of yours personally?
3: I think that's very difficult to answer. But let's just say I really enjoy Intro to IR because, you know, it's first semester students and they hardly have any idea about what IR is, what it entails. So bilkul ek blank slate ko jab aap introduce karte ho ideas, you know, which are so relatable to what is happening around us, it kind of, you know, it's always interesting to see how they respond to it and how they're always saying, oh, we understand, this is what is happening around us. So I think the most enjoyable course in that sense would be the introductory IR course.
2: That's good to know. So taking from your answer, most people aren't familiar with what IR is actually. So how would you describe IR to someone who don't know about it?
3: So as I said, I completely agree with your statement that not many people know what we study in IR, which is actually kind of, you know, paradoxical as well, because IR is all around us. Agar aap dekho, duniya ke andar itne sare events ho rahe hain on a daily basis. You know, right now, if we see the world around us, there are actual active wars going on, and there are so many events, you know, in the sense of economy, domestic politics, you know, events that shape each of us as a Pakistani, you know, when we look at our political system and what it is providing for us. So in that sense, you know, IR is something that is very easy to relate to, and yet it is difficult to define in that sense because it includes so many things. So well, bahut basic level pe shayad aapko ek definition agar dena chahun, just to explain to a layman or to somebody who doesn't know what it is, it would just be a study of how the world works across borders. So, you know, itne big questions hain duniya ke andar ke countries cooperate kyun karte hain, countries jo hain wo wars aur conflicts ke andar indulge kyun karte hain, duniya mein organizations kya kar rahi hain, economies kaise interact kar rahi hain, cultures kaise interact kar rahe hain, ideas kaise interact kar rahe hain. So hum IR के अंदर इन सब चीजों को स्टडी करते हैं एंड वी जस्ट डोंट लिमिट ourselves टू स्टेट्स. वी ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो IR हैज बिकम मच ब्रॉडर ओवर टाइम. सो IR के अंदर आप MNCs के बारे में भी पढ़ते हो, आप NGOs के बारे में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UN है, जैसे इतनी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू नो टू अ लार्ज एक्सटेंट सोशल मूवमेंट्स, यू नो इवन इन सेंस आप देखते हो दुनिया के अंदर इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज कैंपेन्स चल रही हैं. ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ IR बिकॉज दे टेल अस अबाउट वॉट द यू नो वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट. सो देर इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड, यू नो नॉट जस्ट विद इन योर ओन कंट्री, थ्रू आउट द ब्रॉडर वर्ल्ड इज बेसिकली यू नो फॉल्स इन द रियल्म ऑफ IR.
2: Thank you, teacher, for giving us a brief introduction of IR. I'm sure students who don't know about it will be interested to learn. And now, my question is, with so many global events folding every day, how does studying IR helps us make sense of what's happening around us?
3: So we have tools in IR. Just like, you know, in every subject, you have various tools which help you understand, you know, how to make sense of the various things that are happening. इसी तरह IR में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हम लेवल्स ऑफ एनालिसिस को यूज करते हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, सिस्टेमिक आ जाता है. सो वॉट वी डिस्कस इन दैट इज कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीडर है तो वो किस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लीडर जो कि डिसीजन मेकिंग के रोल पर है, ही इज द वन और शी इज द वन हु इज मेकिंग those decisions. So it does it come down to that person, you know, their own experiences, their own personality, their own, you know, whatever they have been through and whatever the agenda they have put forward. Personality is very important. So even if you look at the world today, if you just compare contrasting personalities, to aap US ke presidents ko dekh lo, you know, Obama had a different personality. You want to understand, you know, foreign policy decisions that, you know, US undertook during Obama's presidency. If you're using an individual level of analysis, you would see how his personality shaped that. Similarly, you know, Trump has a different personality. Joe Biden has a different personality. So you look at their own personalities and how that influences decision making. So is tarah different levels aur hain. Hamare paas ek domestic level aa jata hai jo hame batata hai ki ek state ki internal characteristics kya hain. So वो स्टेट पावरफुल है, वीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा ओपन है, कितनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है दुनिया के साथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके डोमेस्टिक फीचर्स हैं. सो यू नो दे ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ स्टेट इज एक्टिंग इन द वर्ल्ड. उसके अलावा जो मैं आपको कही थी, थर्ड एक कॉमन लेवल है जिसको हम यूज करते हैं, वो सिस्टेमिक है. दैट टेल्स अस के अलायंसेस क्या हैं दुनिया में, पोलैरिटी क्या है दुनिया में, कितनी सुपर पावर्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, स्टेट्स के अलायंसेस कैसे हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं. बिकॉज इफ यू सी कंट्रीज विल टेंड टू फॉलो देयर एलाइज एंड स्पेशली इफ देयर इज अ यू नो वीक स्ट्रांग रिलेशनशिप देयर. सो वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी IR की अंडरस्टैंडिंग को, इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को.
2: थैंक यू सो मच मिस फॉर दिस इनसाइटफुल आंसर. अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 की दुनिया.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, everyone, to FM 92.6 UCP Ki Duniya. Today, I'm here for Faculty Awards, and hamare sath hamari guest hai Miss Aisha Naseem, and we were discussing ke IR ke andar agar hum dekhe to global events ko hum kaise understand kar sakte hai ki hamare aas paas jo kuch ho raha hai usko IR ke view se kaise explain kar sakte hai. Okay, Miss, next mera question hai ki jaise state mein central government hoti hai, but IR mein koi central authority nahi hai, to decision making kaise hoti hai aur problem को सॉल्व कैसे किया जाता है?
4: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज़ अ वेरी कोर यू नो इशू और टॉपिक इन IR, जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज़ के साथ ग्रैपल करते हैं, और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम, हर इशू को टैकल करने के अंदर ये यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नज़र आती है, जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड वेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स, तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, यू नो, कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, IR की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी इज बेसिकली रिफर्स टू दिस फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, यू नो, व्हाट हैपेंस एंड यू नो हाउ डू स्टेट्स इंटरैक्ट. सो आप इसके अंदर देखोगे कि क्लियर कट है कि देयर इज नो अथॉरिटी. यू नो, यू सी स्टेट्स ब्रेकिंग लॉज, एंड यू नो, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसको स्टेट्स ब्रेक भी करती हैं, लेकिन they get away with it, and you know, some get punished and some don't get punished. So aisa koi universal hame system nahi nazar aa raha jo ki ek local government for example karti hai. And yet despite that, hum ye bhi dekhte hain ki cooperation ho rahi hai, kuch cheezon ke andar law of making jo hai wo ho bhi rahi hai aur usko follow bhi. Okay, it is the poorest, you know, most unstable, most, you know, weakly governed part of the world. To post colonialism hame ye batayegi ki, you know, colonial powers ne kaise resources wahan se एक्सट्रैक्ट किए और फिर किस तरह से अपने आप को डेवलप किया. एक इतनी फेमस बुक है, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स दैट यू नो, ये जो रिसोर्स कर्स है अफ्रीका की, इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज यू नो ब्रॉट अपॉन देम बाय देमसेल्व्स, इट इज समथिंग विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन देम. इट इज अ पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और अंडर डेवलपमेंट. और ये हमें क्या चीजें, ये सारी एग्जाम्पल्स बताती हैं कि देर इज अ वे फॉरवर्ड. मतलब थोड़ी सी एक क्रिटिकल थियरी की ये एडवांटेज है कि वो आपको ये भी बताती है कि हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहेगी कि आप डीकॉलोनाइज करें, जो आप लोगों के लिए नई चीजें वर्क कर रही हैं उनको छोड़ें, और जो चीजें वर्क कर रही हैं उनको

0: अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कॉलोनियल टाइम से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट देवर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल. यू नो देवर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज करो और स्टडी करो, तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज्यादा सूटेड है. सो देयर इज होप फॉर अ चेंज.
1: थैंक यू सो मच मिस. और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे कॉलोनियल लेगेसी है, बिकॉज़ एवरी कंट्री वाज अ कॉलोनियल एट सम टाइम.
0: नो इट्स नॉट दैट, यू नो, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल और जस्ट लर्न द एग्जांपल और टेक अवे कि यही है कि सारी गलती उनकी है. आई थिंक दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग. वी शुड रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स एज वेल, बट आई मीन देयर इज अ लेगेसी एंड इट शुड टेल यू कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ्लेक्ट कर दें ब्लेम सारा, दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग.
1: थैंक यू सो मच मिस. एंड आपके इतने डिटेल्ड आंसर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिटिकल थ्योरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरी डिटेल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ आईआर, नॉट जस्ट बेसिक थ्योरीज. तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू अस एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस आयशा नसीम टू बींग आवर गेस्ट फॉर टूडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड लर्निंग टू होस्ट हर. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. FM 92.6 UCP की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से गैराजी की वजह पूछे तो टाल मटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर न हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
3: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।